0: ग्रेजुएट 90,000 पर मंथ कमाता है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
1: In the halls of this temple, an ancient tradition is taking a leaf from stock market trading floors. On offer is a low-cost community matchmaking service for Hindu families.
0: मांगलिक लड़का 33 साल 5/11 मई 92 बीटेक पीजीडीएम सर्विस एमएनसी 9 लाख का पैकेज।
1: Interested parents of prospective brides and grooms come together to see if the match is right. As rural Indians migrate to urban centers, old village connections are lost. Settings like these have become a trusted way for parents to find the right partner for their child.
2: NRI ladki UK London mein working hai. Sonam Sharma Punjabi family June 91 born 34 saal कद 5 फिट 6 बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 80,000 पाउंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड सालाना पैकेज है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
3: वी अनाउंस मिस्टर सो एंड सो, एनी गर्ल इंटरेस्टेड इन दैट बॉय? They look whatever. If there's nobody interested, then we pass. The next kid. Same way, left side. People are meeting and we haven't seen anything wrong, obnoxious, nothing. We are very simple here and we help people to get the kids registered.
4: मुझे दो एक महीने हो गए यहाँ आते हुए और बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ रिश्ता। तो अच्छी जगह है, यहाँ पर आपस में सब मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है, पुराने ज़माने से अलग तो नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया। अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा है, अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा कल्चर है। लव मैरिज के अंदर तो जब प्यार किसी से हो गया, लव हो गया, तो उसके बाद तो कोई कल्चर ही नहीं है।
1: But while tradition offers a safety net, stepping into the shadows can lead to a trap. A blackmailer is holding a prominent businessman to ransom. He has a compromising video of the businessman. In exchange for this video, he wants $200,000 in cash. The detectives use a delaying tactic. They deliberately miss the deadline.
5: No. मेरे को अभी एक घंटे तक तुम्हें
6: छोटे छोटे पकड़ आ जा। अरे तू सोगी सो जा ब्लैकमेलर।
5: रात में सुबह में जहां मर्जी मिल लेंगे, पेमेंट आएगी मेरे पास 100% आएगी।
1: The businessman gets the blackmailer to agree to a reduced sum of $27,000. The detectives have just 2 days to find the extortionist. Otherwise, the victim will have to cough up the cash. The clock is ticking. The blackmailer's wife is the businessman's former office manager. She was in charge of collecting payments. The enterprising employee diverted company funds into her own bank account and was caught red-handed. She then makes a proposition.
3: Now she started crying, right, that, you know, my husband beats me up, he, you know, he abuses me at home, you know, he needs 15,000 rupees every month from me, what do I do, like, you know, and I cannot return the money back to you, but, you know, I'm ready to do anything that you want me to do for you.
1: The businessman thought he was being compensated for his loss with a fling. But she was two steps ahead. While he was booking a hotel room, she plotted.
3: And this time when she met him there, you know, she asked her client to remove his clothes. Right? Once he removed his clothes, you know, she took out his mobile and started shooting our client.
7: 5 addresses of a subject.
1: If the video goes public, it would destroy his marriage and career. The detectives need an address.
8: What have you identified?
1: So far, nothing.
3: I tell you. उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ये सोच रहा है कि वल्नरेबल टारगेट है 65 ईयर ओल्ड पर्सन है और अब ये फंसा हुआ है कर तो कुछ सकता नहीं है उसकी वाइफ को पता है कि इसकी वाइफ है इसके बच्चे हैं उसको ये मालूम है कि अगर इसने कुछ भी किया तो ये हील बी ना बिगर सूप सो लेट अस से इफ देयर इज एनी क्राइसिस एट ऑल इट बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स वी आर यू नो डीलिंग विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल वी आर डीलिंग विद डार्क थिंग्स ऑल द टाइम
1: While the team hunts for the blackmailers, a different kind of tragedy plays out. A housewife, married for 12 years, has just made a startling discovery about her husband.
9: Yeah, hi. Please tell me. After 12 years of marriage,
10: Daughter?
9: Yeah.
10: So how come you have a daughter?
9: I'm 5 years.
10: Oh, okay.
9: But now I realize this, I cannot live with this life.
1: To get custody of a daughter and parental support, she needs more than just suspicion. She needs evidence, admissible, undeniable proof. The team decide to hide a listening device in the family car.
3: Brother, जो हमें कार में बग यूज करना है ना वो ये GSM बग यूज करेंगे ठीक है और इसका ना मुझे बैटरी साइज इंक्रीज चाहिए ठीक है कि मुझे चाहिए इसमें कम से कम 3 दिन का बैटरी ठीक है तो ताकि वो जो ना उसको रिप्लेस अगर करे 3 दिन में काफी रिकॉर्डिंग आ जाती है राइट हमें क्लाइंट को देने से पहले हमें टेस्ट करना है तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं देने से पहले अपनी गाड़ी में लगाए जरूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की हाउ इज इट वर्किंग हाउ इज फंक्शनिंग
11: बस देखना स्लाइड ना हो कुछ स्लाइड आराम से हो जाए
12: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ क्योंकि उनकी अपनी कार है अपनी कार में वो खुद लगा रही है सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे
13: और हम जब भी बग प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं नॉट इन हर एब्सेंस सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं तो हमें बहुत जल्दी बग प्लेस करना होगा

0: Extended by popular demand, Wondershop Fest has been extended till 14th October. It's your final chance to bundle up and save big with savings of up to 70% from brands like Nature's Farm, Comvita, Kinohimitsu, Omron, Dr. Wu, Acer Pure, and more. Catch daily flash deals at 12 and 8 p.m. Limited quantities available. When it's gone, it's gone. Watch, shop, save. Hurry, promotion ends 14th October. Visit wondershop.sg now.
1: The location is set. If the blackmailer senses a trap, the compromising video will go public.
2: हाँ ताकि ज़्यादा अगर हंगामा मचता भी है वहाँ पे तो वो उसके हम टेक केयर कर सके और एक बार वो पकड़ा गया तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा और सिंपल सी बात है आपने कोई गलती थोड़ी करी आप हम कोशिश लेकिन फिर भी हमारी यही रहेगी कि ऑफिस में पहुँचने से पहले ही उसको नीचे से ही हम लोग उठा लें ठीक है टीम चारों ओर स्प्रेड होगी ठीक है तो हमने पूरी उसकी प्लानिंग करके रखी हुई है तो आप हम जो है ना उसको कोशिश यही करेंगे उसको नीचे से ही उठा लें
1: The detective agency has roped in the help of the police, who will conduct the raid.
3: Strategy के अनुसार हमें से कहीं बाहर लेना है.
4: Office सही जगह है, वहाँ भीड़ भाड़ है, हमारे आदमी छिप जाएंगे. और अगर इसने कहीं अकेले में बुला लिया ना, चेंज कर लिया, तो हम फंस जाएंगे.
1: But as the drop time approaches, the tracking signal begins to behave erratically. The phone is moving. But not towards the drop site. Could it be a decoy? Time's running out. The team must push forward with the sting. The police are planning to apprehend the blackmailer as soon as they can confirm his identity. The trap is in place. The police are in position. Now, they just need the target to walk into their crosshairs. The detectives wait in the background. While the police conduct the operation. The raid is a success.
5: But the problem is this ki usne apna phone apni wife ko diya hua tha. Right? Aur hum subah se usko trace karte uski location. To hame laga ki ye kahin pe Delhi mein roam around kar raha hai. Pata nahi he'll come for collection of the payment or not. और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ही केम फॉर द कलेक्शन ऑफ पेमेंट विदाउट हिज मोबाइल एंड हिज मोबाइल वाज रोमिंग अराउंड समवेयर एल्स हिज वाइफ इज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर वाइफ जो है अभी तक किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंची नहीं है तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको कहां से पिक कहां से करें उसकी वाइफ को या ही इज नॉट विद एनी मटीरियल राइट नाउ वी हैव टू कलेक्ट द मटीरियल नाउ तो वो मटीरियल कलेक्ट करने के लिए हमें जो है वो उसकी वाइफ को पिकअप करने आना पड़ेगा
1: द पुलिस हैव द हस्बैंड इन कस्टडी बट नॉट द इनक्रिमिनेटिंग वीडियो That footage is in his phone with his wife, who is still at large. They bring in her brother to help convince her to surrender.
6: So basically, अभी क्या है कि it's about to be solved now. तो अभी क्या हुआ है कि his wife has come inside. उसके पुलिस ने pressurize करके उसे सारे उसके laptops, memory cards, mobile phones मंगा लिए हैं. She knew that she has got struck. ठीक है तो obviously you know she is all under pressure कि they would also get arrested it's not that she can file a fake case now and she will be left तो अब जो है obviously उसे against आएगा तो
7: सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो यही था कि भाई एक तो हम extortionist को पकड़ लें दूसरा जो evidences जो भी हो जिसके basis पे वो blackmail कर रहे थे वो सारे हम लेके और वो recover हो जाए बस
6: पहले smart game play किया she was roaming around तो इस वजह से हम उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके तो ट्रेस करके वहाँ से उसको उठा नहीं पाए वो सबसे चीज़ चैलेंजिंग लगी हाँ। और फिर जब वो आ गई थी और एकदम से आगे उसने हंगामा मचा दिया मैं रेप का केस डाल दूंगी पीछे से किसी ने उसको समझाया होगा तो उसको इंटेंसिटी नहीं पता सिचुएशन की वो आते ऐसे बोलने लगी तो हमें लगा कि कोई और बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए बट जब उसने रियलाइज़ किया कि इंटेंसिटी इस केस से कितनी ज़बरदस्त है और जब उसके हस्बैंड ने भी उसको बताया उसके हस्बैंड के भाई ने भी उसको बताया तो फिर वो एकदम से सबसाइड हो गई ना तो अब वो रो रहे हैं आप तो दोनों
7: हाँ नहीं ठीक है हमारे को भी यही डर था कि कहीं वो जो लेडी है वो एविडेंसेस को कहीं छुपा दे या वो कर दे तो वो अल्टीमेटली उनको हमने पकड़ा तो उसे मैट्रिक्स में डिसॉल्व
1: द कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो इज सिक्योर्ड फॉर द बिजनेसमैन इट्स अ क्वाइट ड्राइव होम टू अ वाइफ एंड फैमिली हु विल नेवर नो हाउ क्लोज दे केम टू सीइंग हिम इन द टैब्लॉइड न्यूज़ द केस